साथियों, वैसे तो मुस्कान एक ऐसी जादुई कुंजी है जो हर चुनौती को आसान बनाती है, अपनी लंबी और खुशनुमा जिंदगी को और भी बेहतर बनाती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आंतरिक शक्ति के साथ सकारात्मकता भर देती है। जिंदगी की इन राहों पर हमारे साथ वो छोटे छोटे नन्हे से फरिश्ते भी तो होते हैं ना, जो हमें चाची, बुआ, बहन, दीदी कहकर पुकारते हैं और अपनी एक छोटी सी मुस्कान से हमारी सारी थकान, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत के साथ, बात करते हैं और सुनते हैं इस गीत की।

जिस तरह से मौसम बदलता रहता है उसी तरह से जिंदगी में समय का भी अपना महत्व है। समय भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल को सुख की छांव भी आएगी, और अगर आज सुख है तो कल दुख के बादल भी छा सकते हैं। तो इन सब से घबराना कैसा, हमें बस तैयार रहना है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। और जब ऐसे में साथ होता है अपनों का तो ये राहें और भी मजबूत हो जाती हैं, ये पल और भी मजबूत हो जाते हैं। समय की बात करें तो समय वाकई किसी के हाथ में नहीं रहा, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम समय के साथ किस तरह से चल सकते हैं, या तो रोकर या हंसकर। जिंदगी को हमने गुजारना है, ये सिर्फ हमारे ही हाथों में है। तो हमें सिर्फ कोशिश और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।

निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजनी अभी बाकी हैं, कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। जी हाँ, जिंदगी की राहें चाहे ऊंची हो

चाहे नीची हो। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि ये दिल की कली हमेशा खिलती रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिलहाल भोर सुहानी से विदा लेने का समय, आज की आखिरी प्रस्तुति ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और रूपा आपसे विदा लेगी। नमस्कार।

0: Glasgow.
1: The Commonwealth Games. जब भी कोई भारतीय एथलीट बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए मेडल जीत कर लाता है तो उसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहती, वह भारत के करोड़ों दिलों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा से भर देती है। राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन मिली झंडू कुमार की ये ऐतिहासिक कामयाबी भी कुछ ऐसी ही है। पैरा पावर लिफ्टिंग में उनके इस कांस्य पदक ने न केवल भारत का पदकों का खाता खोला बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब इरादे बुलंद हो तो हर बाधा छोटी पड़ जाती है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है जो हम ग्लासगो में आके अपना झंडा लहराए हैं, इंडिया के मेडल अपना नाम किए हैं। तकलीफ समस्या को हमने एक दोस्त की तरह बना के रखे थे, उसी दोस्त के बदौलत, जुनून के बदौलत ग्लासगो में मेडल जीते हैं सर।
3: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में आज भी गर्मी है, लेकिन आज की गर्मी शायद जीत के जश्न की नहीं, उस जिद की है जो हार के बाद भी बुझती नहीं है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ढेर सारे पदक जीतने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। कल का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से भले ही वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन खेल हो या जिंदगी, कभी कभी एक दिन का नतीजा पूरी कहानी नहीं बयां करता। कभी एक छोटी सी आवाज बड़ी लहर बन जाती है और कभी एक छोटी सी जिद बड़े बदलाव की वजह। इसी भरोसे के साथ भारतीय खिलाड़ी भी आज फिर उतरेंगे मैदान में, क्योंकि बड़े मुकाबले हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते। कभी कभी लगातार खड़े रहने का हौसला ही इतना होता है कि हालात को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। आइए जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन क्या कुछ घटा।

0: in boxing, Haryana's Sachin Sivach, championships medalist, stormed into the round of 16 in the men's 60 kg weight category. Sivach comfortably dispatched Canada's Kioma Ali Ahmadiye, a bronze medalist from Birmingham, 4-1, using his height and technique to great advantage. The win moves Sivach into the pre-quarterfinals, where he will face the tough challenge of England's Will Hewitt.
1: लॉन बॉल्स खेल शायद भारत में बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इस खेल में भारत का नाम जरूर सुन रही है। गेंद धीरे चलती है, मुकाबला धैर्य से जीता जाता है और भारत लगातार अपने निशाने पर पहुंच रहा है। शुरुआत करते हैं वुमेन पेयर्स से, जहां पिंकी और रूपा रानी चिरकी की जोड़ी ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी नॉकआउट राउंड तक को बुलंद कर दिया है। कल खेले गए मुकाबले में टोंगा से आने वाली मिलिका नेथन और पेरिस बेकर की जोड़ी को इन्होंने हराया। पिंकी और रूपा दोनों ही 2022 की उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो मुकाबले आउटडोर यानी नेचुरल ग्रास पर खेले गए थे, इस बार के मुकाबले इंडोर्स यानी कारपेट वाली घास पर खेले जा रहे हैं, जिसके लिए पिंकी बताती हैं उन्होंने लंदन जाकर खास तैयारी की।
2: जितने भी हमने तैयारी पहले करी है या 22 में भी जो हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी वो ग्रास पे थी और हमेशा ग्रास पे हुआ है। इट्स अ फर्स्ट टाइम ये इंडोर हो रहा है। इसके लिए जो हमें चाहिए थी फैसिलिटीज, जो टाइम चाहिए था जितना, और जो टेक्निकल चाहिए थे, हमारे मैनेजर का सपोर्ट चाहिए था, वो सब हमें मिला है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, होपफुल कि हम हिस्ट्री दोबारा क्रिएट करें, तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए।
1: दूसरी तरफ अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे 43 साल के पुतुल सोनोवाल मेंस सिंगल्स में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने कनाडा के रायन बेस्टर, जो कि आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हराया। दूसरे मुकाबले में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि कल पुतुल को एक कड़े मुकाबले में मलेशिया के इज्जत जुल्केप्ले के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुतुल नॉकआउट राउंड में पहुंचने की दौड़ में बने हुए हैं। पुतुल देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पुतुल के साथ खुद भी हुआ।
3: बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है। कोशिश करूंगा कि इंडिया को मेडल देने के लिए। पहले लॉन बॉल असम में ऐसा कोई जानकारी नहीं था, लेकिन 2022 में जब इंडिया ने पहली बार वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल जीता, तो वहाँ पे असम का भी एक मेंबर था जो लॉन बॉल इवेंट का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन नयनमणि सही किया। उसके बाद असम में अभी लॉन बॉल का ऐसे माहौल हो गया है कि सबका टारगेट है सभी प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम खेलना।
4: अब बात करते हैं 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। शनिवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया। हालांकि मैच के नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस स्तर पर चुनौती कितनी बड़ी है। वेल्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पूल बी के इस मैच में 16-1 से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय टीम वेल्स की आक्रामकता और स्कोरिंग की रफ्तार का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई और फिर इस अंतर को कवर नहीं कर पाई। वेल्स ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी, वही भारतीय टीम अपने 12 प्रयासों में से सिर्फ एक को ही पॉइंट में बदल सकी, जहां रीना गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र अंक बनाया।
1: महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की ये राष्ट्रमंडल खेल पहली बार इस बड़े मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत है। और बताते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन।
5: It's very important for us to embrace all sport that has got medals at the international level and to see wheelchair basketball not only flourish but to be able to field a team in the Commonwealth Games is heartening indeed. They are inspirations and they are pioneers as well. This team will inspire a lot of others.
4: Team अब इस शुरुआती मैच से तेजी से सीख लेकर प्रतियोगिता में तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी, ताकि जब वो नाइजीरिया के विरुद्ध 27 जुलाई को कोर्ट पर लौटे तो एक मजबूत प्रदर्शन कर सके।
1: इन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स द क्वार्टेट ऑफ निष्का अग्रवाल, प्रणति नायक, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द टीम फाइनल्स। अलास, दे कुड नॉट सिक्योर अ मेडल। हाउएवर, बाय द वर्चू ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, इशिता रिवाले एंड प्रतिष्ठा समांता वर एबल टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज द रिजर्व्स फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स, व्हिच विल टेक प्लेस ऑन संडे।

0: शनिवार को पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में भारत के दो तैराकों दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने हिस्सा लिया। टोल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में दक्षिण ने अपनी रेस 3:58.09 में पूरी की, जबकि आर्यन ने 4:02.6 का समय क्लॉक किया। कुल 27 तैराकों के बीच दक्षिण 15वें स्थान पर रहे, जबकि आर्यन उनसे एक पायदान पीछे 16वें स्थान पर रहे। हीट से सिर्फ शीर्ष 8 सबसे तेज तैराक को ही फाइनल में जगह मिलती है, इसलिए दोनों में से कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोनों आज 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगे।
1: आइए अब बात करते हैं कि रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन कौन कौन से खेलों पर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग, जिसमें मीराबाई चानू मंच पर उतरेंगी, बारबेल सामने होगा और करोड़ों निगाहें उन पर।
2: इंडिया विल बी फील्डिंग अ वेरिटेबल लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट इन वेट लिफ्टिंग टूडे एट द SEC आर्मेडिलो एज मीराबाई चानू कम्स आउट टू डिफेंड हर क्राउन। द 2-time चैंपियन इन द 48 kg इवेंट इज द अनडिस्प्यूटेड हेडलाइनर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड व्हेन फिट चानूज एबिलिटी पुट्स हर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इन द फील्ड। द टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विल फेस अ स्टर्न चैलेंज फ्रॉम लिफ्टर्स belonging to Canada and Papua New Guinea, but her personal best is above the field and she is the favorite to finish on top of the CWG podium once again.
3: हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छे चल रही है, हम पूरा कोशिश करूंगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा, तो ज्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखूंगी।
2: Chanu comes into the Commonwealth Games after agonizing fourth place finishes in the Hangzhou Asian Games and the Paris Olympics. G. Rajaraman on Chanu's preparation.
4: She should start as the favorite in the 48 kilo class. There is no doubt about that. She's the Commonwealth champion from last year. People will definitely expect her to do well in the Commonwealth Games. She's been very keen on doing well in the Commonwealth and in the Asian Games. So she has been very conservative in her preparation. She's not competed in too many big events. So she's been smart, so I expect her to be on the podium for sure. I think she is most likely to win gold. In fact, her coach has said that they're not even looking to do 90 kilos in snatch. That perhaps will come in the Asian Games, right. And they know that they can win gold even without being at your 100%.
2: In the men's 60 kg category, fellow Manipuri Rishi Kanta Singh, the 2025 Commonwealth Championships gold medalist, comes into the Glasgow Games with realistic podium ambitions. He is not new to the CWG, having participated in 2022 in Birmingham in the 55 kg weight division. Meanwhile, Muthu Pandi Raja, hailing from Tamil Nadu, has come back to the sport after several years in the wilderness through injuries. He won silver in the 2025 Commonwealth Championships and is the current national champion, where he lifted a massive 302 kgs to win gold. This makes him a strong medal contender in the 65 kg weight category.
1: फिर नजरें होंगी बॉक्सिंग रिंग पर। बॉक्सिंग में एक पंच मुकाबला बदल सकता है, लेकिन रिंग में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं कलेजा चाहिए, जिसका परिचय दिया जादूमणि सिंह ने परसों हुए मुकाबले में। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने परसों राउंड ऑफ 32 में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से यानी 5-0 से हराया था। वही जज्बा लेकर रविवार को जादूमणि एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका सामना आर्च राइवल पाकिस्तान से है। सामने होंगे पाकिस्तान के सुमैमा रहमान, और हर एक पंच के साथ कहानी बदलेगी। क्या अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि सिंह एक बार फिर इस चुनौती के सामने खरे उतरेंगे? ऐसा ही जज्बा लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना डेब्यू करने पहुंचे हैं आदित्य प्रताप यादव। पहले राउंड में इनको बाय मिला, जिसके चलते पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये सीधा राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सामने हैं युगांडा के नूहू बाटे। इन द वुमेन्स डिविजन ऑन संडे ऑल आईज विल बी ऑन प्रीति, हु हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। She defeated a 3-time world champion to secure the gold medal. She will be gunning to repeat those heroics at the Commonwealth Games too. In the 54 kilogram weight category,

0: She will be up against Deborah Mtenje of Malawi.
1: Moving on to lawn bowls, India have a busy day at the Scottish Events campus as in the afternoon today, Ruparani Tirki and Pinky Singh take on Namibia's Diana Willian and Amanda Steenkamp in a women's pairs Section B contest. Having defeated the world champion in his campaign opener, Putul Sonewal faces Malta's Sean Parnas in a must-win Section D contest in the men's singles.
0: हर छलांग हवा में उड़ता शरीर जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा मुजाहिरा किया जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। यहाँ शरीर की हर हरकत कला बन जाती है और एक छोटी सी चूक बरसों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत की पुरुष टीम भले ही मेडल ना जीत पाई हो लेकिन इंडिविजुअल प्रतियोगिता में तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। यहां अच्छा प्रदर्शन उनको पोडियम पर ला खड़ा कर सकता है और करोड़ों भारतीयों की यही उम्मीदें होंगी कि तपन और योगेश्वर दोनों ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्नास्टिक्स में भारत को मेडल दिलाएंगे।
1: Let's now turn our attention to swimming, as India's leading male swimmers will combine forces in the men's 4x200 meters freestyle relay at Tolcross Swimming Center. Srihari Natraj, Anish Gowda, Aryan Nehra and Dakshin Shashikumar are scheduled to compete in the heats in the evening today. Srihari brings considerable international experience to the quartet. In a relay, individual speed must come together with well-timed changeovers, and India will first look to secure a place in the final. Scheduled for later tonight from a very tough field.
2: Australia topped the current medals tally with a grand total of 23, including 12 gold. England are second with 15 medals, while Nigeria are third with 6. India, meanwhile, with one bronze, are right now in joint 10th. Today, Indian athletes will set the Glasgow chill ablaze once again with every lift, every stroke and every uppercut as the quest to bring glory to the nation continues at the 22nd Commonwealth Games.
1: फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ वापस राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ इसी वक्त पर जुड़ेंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी और संपादक वंदना के साथ मैं मेघा सिन्हा और दर्पण टिकिया आपसे लेते हैं इजाजत।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJP ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honor bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
6: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा इस बात से हम लोगों ने माना है कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम
5: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
7: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines. So, hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapis jaye.
5: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
8: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and honesty.
5: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the Prime Minister's Office and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Villages Program 2026 at 4:30 p.m. today via video conferencing. Our correspondent reports that over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister.
9: The Viksit Bharat Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of the last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The participants were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youth. As part of the program, participants lived with local communities and undertook activities such as Swachhata Drive, awareness campaigns on government schemes, Yuva Sammelans, cultural exchange programs, tree plantation drives, mini model panchayat simulations, interactions with local artisans and visits to institutions of strategic importance. With Nitika Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu returned to New Delhi this morning after concluding a state visit to Moldova, North Macedonia.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें।

मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं।

साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है।
अपने अनोखे स्वाद और गुण

की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में
मैंने गणेश उत्सव की बात की थी।

मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा

कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक

0: सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग

0: बाउल सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +38093355958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे। इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और

0: बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर एफसी से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किशोर
1: भूल गए
0: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: चार का मौसम

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयन्। प्रधानमंत्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः। प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावाञ्जलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मंत्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्गो नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायाम् अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्तोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतं अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः सम्बोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्री मोदी न्यगादीत यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरी इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम 1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपनानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरवगौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानमधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य 4th दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतं प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेज।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 8:45 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೀಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की. तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे. परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला. कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया. और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधार

0: के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मंडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force.

0: Force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system, and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
0: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है निर्णय लेना है
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री वी हैव कंटिन्यूअस मीटिंग्स टुडे दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा
0: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें
0: Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil War martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां कठिन मौसम दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ
0: The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
6: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट

0: 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआईज ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं। भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। जुलाई में उन्होंने एफएआर के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आशुतोष, ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं। एफपीआईस का रुख, उत्साह, दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी। लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वहां से साउथ कोरिया के मार्केट से या जहां पर भी एआई वाला और चिप वाले मार्केट थे, वहां से पैसे निकले हैं और हमारे बाजार में आ रहे हैं, तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का, या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है, इक्वेशंस बदल गए हैं?
1: देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड है, जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, वो बरकरार थे, बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे। और इसीलिए जो एक सेक्युलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना, उसका निवेशित होना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है। हाँ, बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियां बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो जरूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है। अभी हमने देखा पीछे, जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया। हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है। AI का एक ट्रेंड है, बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंड्स काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी इनके ऊपर फोकस रहा, लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी। तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइस जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है।
2: Okay, taking the discussion further from where you left, saying that, you know, there is still interest in the Indian market. So, from the retail investor's point of view, Ashutosh, how do you see this in building confidence in the market sentiment?
1: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets. And when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
2: Correct.
1: Time and again, we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what, you know, these investors are doing. Focus far more on your circumstances. What is your investing need that you are investing for? How much you can save and invest? And what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve? If you have the long time horizon, equity is still the most promising and the most wealth generating asset class with the most wealth generating potential, and that remains a secular trend.
2: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi. Sunil Gupta, welcome to the show. Please ask your question.
3: Namaskar, Mahasin Gupta
2: ji.
3: Sir, mere question do the. Ek to ye tha ki mutual funds investment ka koi ek centralized portal hai jisme ki ek hi jagah se sab jagah investment ho sakti hai authorized koi ek sa. Aur initially 32 years age wale ke liye कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए?
1: तो पहला सवाल आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ सेंट्रल के नाम से, जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। आप एमएफ सेंट्रल पे भी अपना लॉग इन कर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आप एमएफ सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको

0: वो कन्वीनियंट लगेगा। आप उस पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ एमएफ सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक हैं आप, और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें। ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह से एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाए, तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल, ये फंड्स सक्षम है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्रेसिव, दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें, भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद अपनी निवेश की मात्रा बढ़ाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी,
2: मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है, तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है, और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद।
0: जी, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं, और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होती है इनकी काफी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं। टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है, और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है। तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए, आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा, और वहां से गोल्ड में निवेश होगा, तो एक लेयर ऐड हो जाती है। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड्स उनके लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है। आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं।
3: ऑलराइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली, व्हाट्स हिज क्वेश्चन? विशाल जी, सवाल पूछे।
4: नमस्कार, मार्केट मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है, तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन सी म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए।
0: जी, आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला। देखिए, आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफ़ी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है, उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है, और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो मल्टी कैप फंड ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, और

0: लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं, तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप जरूर कम से कम 8 से 10 महीनों में जरूर स्प्रेड कर ही लगाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: गुड इवनिंग फॉर ऑल।
3: गुड इवनिंग।
2: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ। मेन बात है क्या, देखिए 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है, व्हाट द यूज ऑफ, आई कांट अंडरस्टैंड एक्चुअली। करेक्शन मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट का लेवल के नीचे जाएगी, MF म्यूचुअल फंड किस लिए हम लोग करेंगे?
0: जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं, तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक निवेश हैं, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है, और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक FD इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं। ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं तो आपको एक काफी मॉडरेट रिटर्न मिलता है। तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं, लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल जो सही रास्ता है वो एक मिडल पाथ है कि आप अपना काफी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में। आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है, 5 साल 10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी जरूरी है। तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है।
3: Listeners, you are tuned to your very own favorite program, Market Mantra, and today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
1: और अब देखते हैं कि सराफा बाजार का क्या हाल रहा है। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुई। आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफी तेजी दिखाई दे रही थी तब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं। एक सही पोर्टफोलियो बनाने के, एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज का लाभ उठाने के लिए किस चीज का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए?

हर जख्म दिखाई नहीं देता, कुछ दर्द मुस्कुराहट के पीछे रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और धीरे धीरे जवाब देता है दिल, काश दर्द का कोई एक चेहरा भी होता, शायद तब लोग समझ पाते कि खामोशी भी कितनी अजीब चीज होती है, बहुत थक जाती है। नहीं बताया कीजिए आप लोग कि सच बात है कि नहीं।

कभी छोटी सी बात पर मुस्करा देता है और कभी एक खामोशी भी इसे बेचैन कर देती है। शायद इसीलिए मिर्ज़ा गालिब ने दिल को सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ी सच्चाई माना है। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी बहुत कम निकले। हर किसी ने सुना होगा शेर। ये शेर बताता है कि इंसान की हसरतें कभी पूरी नहीं होती, दिल हमेशा कुछ और चाहता रहता है और इसी चाहत के सफर में कभी खुशी मिलती है कभी दर्द। आइए अब मिर्ज़ा गालिब के एक और लाजवाब गजल सुनते हैं, और दिल ही जो कि है दिल ही तो है ना संगो किश्त। सुनिए

इंसान लोगों से घिरा होता है फिर भी दिल को अजीब तन्हाई महसूस होती है। बात सिर्फ किसी भी के साथ होने की नहीं होती, बस बात होती है शख्स कोई यहाँ पर है या चला गया है। महफिल अगर चला गया है तो फिर महफिल बहुत अधूरी सी लगती है। मोहब्बत का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ जब तक साथ होता है तो दुनिया छोटी लगती है और जब फासले आ जाते हैं वही दुनिया बहुत बड़ी नज़र आने लगती है। शायद इसी एहसास को अल्फाजों में पिरोकर शकील बदायूं ने ऐसी गज़ल लिखी जो आज भी हर दौर के सुनने वालों को दिल को छू जाती है।

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। अनुपमा फिल्म का ये नगमा लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मोहब्बत जब अपने ख्वाब बुनती है तो अक्सर उसकी तस्वीर चांद से शुरू होकर दिल में बस जाती है, और जब उस ख्वाब को शब्द मिलते हैं तो जन्म लेता है एक ऐसा नगमा जो वक्त की गर्द भी फीका नहीं कर पाती। पेश है साल 1965 की सदाबहार फिल्म हिमालय की गोद में का एक बेहद दिलनशी गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। इस अमर गीत को अपनी दर्द भरी और सुकून देने वाली आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने, इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और इन्हें यादगार धुनों में डाला है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। तो आइए कुछ लम्हों के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर चलते हैं, जहां चांदनी, मोहब्बत, आरजू और एहसास एक साथ सुरों में ढल जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक में बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर चौथा राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान
3: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
1: The Defence Minister was addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilogram in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190 kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities, and safeguard their constitutional rights. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha today. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall today. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts.

तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है, सुना है रात भर बरसा है बादल, सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:24। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वैसे मिलन की रुत तो है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और वैसे भी हम सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके साथ हर मौसम हमें अच्छा लगता है। और आपको तो मालूम ही है, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक सही गाना आपको उस इंसान के बेहद करीब ला सकता है। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, आप ही के लिए।

वैसे बात तो सही है, जब कोई इतने प्यार और अदब से सलामी इश्क पेश करे तो फिर कोई इनकार कैसे कर सकता है। और वैसे भी कभी कभार भूल समझ कर दिल की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ यहाँ से शुरू होने वाला हो। अगला गीत आप ही के लिए।

वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा यूथ रोज खुद से यही सवाल पूछता होगा कि हमें प्यार हो गया है और अब हमें क्या करना चाहिए। मैं बताऊं आपको, पर आपको ना बॉलीवुड वालों की तरह जीने मरने पर नहीं उतरना है, बल्कि मजबूत फैसला लेना है। और वो मजबूती तब आएगी जब आप उसी रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा रेडियो वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि दो डांस नंबर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर बहुत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:43 और 4 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

आपको पता है इस गाने की सबसे अच्छी बात क्या है? इस गाने की सबसे अच्छी बात है सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद के सजने संवरने पर खुद ही मुरीद भी हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ लव। हम दूसरों के इश्क में गिरफ्तार तो हमेशा होते हैं,

वैसे ये बात तो सच है कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी मोहब्बत की जरूरत होती है। जब आप किसी की नफरत का जवाब भी मुस्कुराकर देते हैं, प्यार से देते हैं, तो सच कहूं बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी पिघल जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच मुंबई और कल्याण में रोके गए 3 अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल से बरामद किया गया। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीविका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
2: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Devas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said, developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Balot, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilograms in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilograms in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kilograms. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 International to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

मुकेश की आवाज पे सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म दुनिया ना माने से। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार और माला सिन्हा ने। फिल्म का निर्देशन किया था वी अवधूत ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में।

रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बहू बेगम से। और ये फिल्म आई थी 1967 में, जिसका निर्देशन किया था एम सादिक ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और

अशोक कुमार ने, संगीत रोशन का था और इस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। और अब आपको सुनाते हैं अगला गीत जो है फिल्म छाया से, लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज में फिल्म आर पार से।

ये सदाबहार गीत आप सुन रहे थे फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में, और आवाज थी गीता दत्त की, संगीतकार थे ओपी नैयर साहब, और इस गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था श्यामा पर, और ये गीत अपने दौर के सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से गिना जाता है, और इस फिल्म के गाने काफी सदाबहार थे। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में,

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई मूवी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कुछ गाने समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि वो हर दौर में एक नए अर्थ के साथ फिर से दोहराए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और ऐसा ही एक गीत था ये जो भी आपको हमने सुनवाया। शैलेंद्र साहब के शब्द थे, शंकर जी के, जयकिशन का संगीत था और लता जी की आवाज़ थी। और जब ये तीनों संगम एक साथ मिलते हैं तो एक अमूल्य धरोहर बनकर सामने आते हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गीत

गीत सुहाने प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने

0: वीडियो संदेश में कहा है कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रीन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक के बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड़ तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीरा बाई चानू को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान
3: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया.
2: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack claiming one life and injuring 29 was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Balot, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilograms in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilograms in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190 kilograms. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Meerabai Chanu on her gold medal victory. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 52 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी वो प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के एहसास को, रात के जज्बात को अपनी बातों से, अपने गीतों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो पता है आपको सबसे इसकी खूबसूरत बात क्या होती है, आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, सामने वाले को पता होता है कि आप कितना बेसुरा गाते हैं, मैगी जला देते हैं और बात बात पर आपको गुस्सा आता है, फिर भी अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको सराहता है, तो समझिए कि आपको एक सही इंसान मिल चुका है। अब ये इंसान आपकी तकदीर में हो या ना हो, पर उसे मांग लेना चाहिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

वैसे ये बात तो सच है कि ये जो नसीब और किस्मत वाला मामला है ना, बड़ा दिलचस्प होता है। जब तक लाइफ में कोई सही इंसान हमें नहीं मिलता, हम सारा इल्ज़ाम इसी नसीब पर डालते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा होता है, सब कुछ पहले से छपा होता है। और इस सवाल का जवाब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, दो लोग मिलकर अपना नसीब तय करते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आप ही के लिए।

0: इस गाने में एक बात बहुत अच्छी कही गई है, मतलब पते की बात है कि मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें जिगर चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, और हाँ थोड़ा सा पागलपन भी जरूरी होता है। मोहब्बत में कोई लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ तो सामने वाले की फिजूल बातों पर भी मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत के लिए दिल के साथ साथ पागलपन भी जरूरी है। अगर आप भी इसी पागलपन में हैं तो ये अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।
1: Mm-hmm.

मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना, मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना, देना हो तो किसी फूलों वाला पौधा देना जिसके फूल आने का मैं इंतजार करूं, ठीक वैसे जैसे मैं तुम्हारा करती हूं। तुम्हारा आना भी तो इन फूलों की तरह है, तुम्हें भी तो महीनों लगते हैं मुझसे मिलने में। जब तुम्हारे दिए पौधे में फूल आएंगे मैं खुश हो जाऊंगी, जैसे तुमसे मिलकर होती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम में कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक छोटा सा फूलों वाला पौधा। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज में।

अगर आप भी किसी के गोरे रंग पर या फिर सिर्फ लुक्स पर फिदा होने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हमारा रंग, हमारा रूप, हमारे लुक्स कुछ दिनों तक रहते हैं। गोरा रंग ढल जाता है, यौवन ढल जाता है, लेकिन प्यार ताउम्र साथ चलता है। तो कोशिश करनी है हमें कि उस रिश्ते के साथ आगे चलें जिसमें प्यार ताउम्र साथ चले।

हमारी आजकल की जिंदगी थोड़ी अलग है ना, जिसमें भाग दौड़ ज्यादा है और सुकून बहुत कम है। बड़े बड़े मकान, ब्रांडेड गाड़ियां और ना जाने क्या क्या हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी शांति से बैठकर हम ये नहीं सोचते कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के साथ से, उनकी हंसी से, उनकी मुस्कुराहट से। तो जनाब, ईंट पत्थर का मकान तो बनता रहेगा, लेकिन वक्त है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम कोशिश करें अपने सपनों का घर बनाने की, जहां छोटी छोटी खुशियां हमें, हमारे परिवार को सुकून देती हो।

रात शुरू में ही मैं आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, 3:10 पर हम राही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी। नीता अग्रवाल मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपंडे का, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम

0: इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि इस शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
0: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination, and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan, and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
2: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instruction of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Baloth, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190-kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय वाय रात्रि के 3:11:24 प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही।

युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना डे और वाणी जयराम के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम परिणय। और अब सुनते या क्या कहा जा रहा है।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आस का पंछी इस फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। मित्रों रैना काल को सजाता ये चांद यकीनन हर दिल का चहेता हमेशा से ही रहा है। यहाँ तक कि किससे वादा करवाने के लिए भी चांद को किस खूबसूरती के साथ सहारा या कहीं गवाह बनाया जा रहा। सुनिए इस गीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना राजहट फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अंग कभी कभी बन जाता है। इसी खूबसूरत वानगी से सजा ये गीत आइए सुनते हैं।

आशा भोसले और जगमोहन बख्शी की आवाज से सजा ये गीत टैक्सी ड्राइवर फिल्म से अभी आपने सुना। 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, सचिन देवबर्मन का संगीत था, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना थी।

मित्रों, हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें बहुत ज्यादा बेचैन कर देती है। कुछ इस तरह

ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा था। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में था। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस

55। साथियों, रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी बन जाता है, सबब कुछ भी हो। अब नींद ना आने के दो कारण कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों से सजा ये गीत आपने सुना, पोस्ट बॉक्स नंबर 999। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत था, प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना थी।

राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे हैं। साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर जादू। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई, नाम काला पत्थर। साथियों, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छी हो तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

मुकेश और हेमलता के स्वरों से सजा ये गीत विश्वास फिल्म से आपने सुना। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गुलशन बावरा की लिखी रचना। साथियों, अब अगला गीत सुनते हैं। कई बार मन में कोई शिकायत होती है किसी तरह की, तो हम कहना भी चाहते हैं उस शिकायत को, और हम ये भी मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति बस जल्दी से हमारी इस शिकायत को समझ जाए और शिकायत दूर हो जाए। लेकिन ये कैसी शिकायत है, जरा सुनिए तो।

हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत कैफी आजमी का लिखा था साथियों। मोहम्मद रफी आरती मुखर्जी की आवाजें थी। फिल्म का नाम दो दिल, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में।

आरती मुखर्जी और मुकेश के स्वरों से सजा ये गीत आरंभ, ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। आनंद शंकर का संगीत था, हरीश भजानी ने ये गीत लिखा था।

लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना आए दिन बहार के इस फिल्म से। 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस

0: पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफिड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियां और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतियों को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वाशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system, and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 14 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

गीता दत्त की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना बाजी फिल्म से, 1951 रिलीज फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना। और अब सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया था। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम दुनिया झुकती है, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। साथियों, किसी से पल भर की पहचान भी कई बार दिलों के, परिवारों के रिश्तों को जोड़ देती है। प्रेम में इस तरह की बात होती है। जी हाँ, प्रेम बहुत कुछ होता है। ये पहचान आगे जाकर एक परिवार के रूप में भी स्थापित होती है।

0: तलत महमूद लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत छोटे बाबू फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना। साथियों, अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सुंदर रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सके सच गए हों। बस उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहें।
1: जीवन पथ में है कहां पथिक तुझे आराम, चलना

फैशनेबल वाइफ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1959 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। मन्ना डे साथियों की आवाज़ें थी, सुरेश तलवार का संगीत था और भरत व्यास की लिखी रचना थी।

सुमन कल्याणपुर के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। साथियों, जो भी रिश्ता जुड़ता है उसमें कोई ना कोई तो पहली पहचान, पहली मुलाकात जरूर होती है। कारण उस पहचान का जो भी हो, उसी पल भर की पहचान को बजाता ये सुंदर नगमा अभी हमने सुना। और अब कौन आ गया है कि आंखों में चमक आ गई है, दिल में खुशी छा गई है।

शास्त्रीय राग आधारित रचना सुनते हैं जो यकीनन मन को सुकून देती है और मन को हर्षाती है, मन को नृत्य करने पर भी मजबूर करती है।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। शिवराम का संगीत था, नीरज की लिखी ये रचना थी। साथियों 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती नारी। और अब अपने घर आने का खुला निमंत्रण देता ये गीत।

0: जिंदगी।
1: भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं। जयदेव का संगीत, सुदर्शन पाकिर की लिखी रचना, फिल्म का नाम

दूरियां 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों और अब जीवन के सुख पिरोती ये रचना

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत रजनीगंधा फिल्म से अभी आपने सुना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सलिल चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना, और अब सावन को आने दो।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। राजकमल का संगीत, गौहर कानपुरी की लिखी रचना। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सावन को आने दो। और अब आज के अरुणिमा प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

आशा भोसले के स्वर से सजा ये गीत सावन की बहार दिखाता आनंद देता ये गीत जुनून फिल्म से आप सुन रहे हैं। 1978 रिलीज ये फिल्म, वनराज भाटिया का संगीत, योगेश प्रवीण की लिखी रचना। आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी ये साथियों। अब अरुणिमा कार्यक्रम समाप्त होता है, अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में बर्लिन प्राइड फेस्टिवल में हुए घातक हमले के संदिग्ध को पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान अब्दुल बल्लौत के रूप में हुई, जो लेबनानी मूल का एक जर्मन नागरिक है। बर्लिन शहर के बीचों बीच हुए इस हमले के बाद लगभग 24 घंटे की तलाशी अभियान के बाद उसे मार गिराया गया। बर्लिन के अभियोजकों ने बताया कि संदिग्ध ने पहले आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह में शामिल होने की कोशिश की थी। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रेडेंस ने इससे पहले प्राइड फेस्टिवल के पास वैन से लोगों को कुचलने और चाकू मारने की घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया था। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में एक अमरीकी सैनिक की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर चौथा राष्ट्रमंडल खेल पदक जीतने पर वह भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan. The Defence Minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women.

समय हुआ है प्रातः की 5:11 और 38 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था भाभी की चूड़ियाँ। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सुधीर फड़के का संगीत था, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना थी। साथियों, सावन का मौसम बस आने को ही है और प्री मानसून तो बरस ही रहा है। रिमझिम रिमझिम फुहार। अब सावन का जब महीना आता है, ये दिन आते हैं, तो ऐसे में जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं क्योंकि आवश्यकता अनुसार पानी भी तो उन्हें मिलता रहता है। तो इसी तरह की फूलों की जो डालियां हैं, ऐसे शब्द से सजा, आइए ये बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं।

मन्ना जी और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। एस एन त्रिपाठी का संगीत था। भारत व्यास की लिखी रचना, फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। साथियों, बहुत सारे विचार होते हैं जो अनमोल होते हैं, और उन्हीं विचारों में एक विचार ये भी होता है कि सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सीखने की जो प्रक्रिया है ता उम्र चलती रहती है, लेकिन यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

नौशाद की संगीत पद्ध की ये रचना आप सुन रहे हैं। शकील बदायूं ने की लिखी ये रचना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज 1954 रिलीज फिल्म शबाब। साथियों, समय का पंख लगाकर भोर से दोपहर, दोपहर से शाम और रैना काल और फिर एक नव अरुणिमा का उदय लेकर आता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे पंख लगाकर गुजर जाता है।

गीता दत्त की आवाज से सजा ये गीत बाजी फिल्म से अभी आपने सुना। 1951 में साथियों ये फिल्म रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना। और अब एक ऐसा रंग आ रहा है जो हम सबका बहुत ही प्रिय रंग है।